संचालन हुई रहा विपद प्रबंधन उत्थान सिद्धांत सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाभ जारी संदेश।

0: स्वास्थ्य प्रक्रिया गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा में प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी प्रतिबद्धता घटी वैवरिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वस्वत रूप में टिकी यहाँ होकर स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक प्रदर्शन करे से कौशल्य अस्पताल आश्रय में संपर्क करना हार्दिक अनुरोध कराती
1: अस्पताल से दे देना सेवा
0: चौबीस घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार कराते
1: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिर से डॉक्टर से प्याज छाती कलेजो नशा मुटू चेक जांच कैदी था
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हार्ट जोड़ने तथा जनरल सर्जरी प्रसूति सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भा सुविधा सम्पन्न ल्याब सेवा उपलब्ध भा प्यारालाइसिस मुख बांधिना नशा दाग बैलक हाथ द्वारा निचलना बिरामी मुकनका फिजियोथेरापी तथा एकुपेन्द्र थेरापी विधि मसे उपचार कैदी था
0: नशा दबले बिरामी अंकन के बिना अपेशन फिजियोथेरापी तथा एकुपेन्द्र थेरापी से सफल उपचार कर
1: 24 घंटा एम्बुलेंस का व्यवस्था कैदी भा असहाय नागरिक एक महिला अनाथ बाल बालिका अपांग ज्येष्ठ नागरिक उकन सेवा में 10% छूट के

sea, अब आप ये महिला सचिवों के पालन पर देखाई इसमें अकेले कर्मी ने करता जो कि पालन में कमी आने उच्चों की भूषण ली और साथ सदस्य उच्च तापमान के कारण उत्पादन घटी आमदारी और संदेश सक्षम

0: ni modo.
1: Yo no tuve paz en algún momento de mi pieza hasta allí no llegó. Le di un programa en un caso de carima, donde le pasaré y salís.
2: सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सू

स्वास्थ्य प्रति हमारी प्रतिबद्धता करती निर्मित स्वास्थ्य सेवा में सर्वस्व रूप में टिकी यहां पूर्ण स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक पहलता करे से कौशल्य अस्पताल बांसकड़ी में संपर्क करना हार्दिक अनुरोध कराती।

0: सर्जरी, हात जोड्ने तथा जनरल सर्जरी, प्रसूति सेवा, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा चेक जाँच गराउँछन्।
1: 24 घण्टा डिजिटल एक्सरे, भिडियो एक्सरे, ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भा। सुविधा सम्पन्न ल्याबको सेवा उपलब्ध भा। प्याराडाइसिसको मुख बाँकिना नसा धाप भैलक हातद्वारा अनि चलना बिरामीहरूकोमा फिजियोथेरापी तथा एकुपेन्द्र थेरापी विधि मसिन उपचार कैजिथा।
0: नसा धापले बिरामीहरूकनके बिना भेषण फिजियोथेरापी तथा एकुपेन्द्र थेरापी से सफल उपचार गर्छे।
1: 24 घण्टा एम्बुलेन्सको व्यवस्था कैजिथा। असहाय नागरिक, एकर महिला, अनाथ बालबालिका, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक हुन सेवामा 10% छुटके व्यवस्था कैजिथा। कौशल्य अस्पताल प्रणाली, बाँसगढी शाखा परस, बाँसगढी बर्दिया, पुरान पेट्रोल पम्प दक्षिण बाजार।
0: सम्पर्क फोन नम्बर 084400192 हो, 084400210। बाँसगढी बर्दिया सँगसँगै फोनको 11।

तो काफी इम्पोर्टेंट है। सो जैसे पता से पांचवें गुरु जयस मदर नामक

राज्य भित्र पकाए जंक फूड कम करी संतुलित खाना खाना रोजी स्वस्थ किशोरी जो स्वस्थ भविष्य का घर हो रेडियो पूर्वाभा एफएम का सहकार्य स्वास्थ्य कार्यालय बर्दिया से जनहित मोदी।

0: मेरे स्वास्थ्य प्रति हमारे प्रतिबद्धता प्रति मेरे स्वास्थ्य सेवा में सर्वस्व रूप में देखिए यहां को स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक तरलता करे कौशल्य अस्पताल बांसरी में संपर्क करना आर्थिक अनुरोध कराती
1: अस्पताल से दे देना सेवा
0: चौबीस घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार कराए
1: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्याज छाती कलेजो नशा मुटु चेक जांच करने था
0: प्रत्येक दिन नशा तथा निम्न सर्जरी हाथ जोड़ने तथा जनरल सर्जरी पशुटि सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भा सुविधा सम्पन्न ल्याब सेवा उपलब्ध भा केरालाई शिशुको मुगाम बिना नशा धाक बिलक हाथ द्वारा अनि चल्न बिरामीको कटकला फिजियोथेरापी तथा एकुपेन्द्र थेरापी बिली बसे उपचार कैजी था
0: नशा धाक बिलक बिरामीकन के बिना अपरेशन फिजियोथेरापी तथा एकुपेन्द्र थेरापी से सफल उपचार कर जे
1: 24 घंटा एम्बुलेंस व्यवस्था कैजी भा असाध्य नागरिक एकल महिला अनाथ बाल बालिका अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक हुकन पूर्ण सेवामा 10% छुटके व्यवस्था कैजी भा कोशीले अस्पताल प्रणाली बाँसरी शाखा 5 बाँसरी बर्दिया पुरान पेट्रोल पम्प दक्षिण बाजार
0: सम्पर्क फोन नम्बर 084400192 हो 084400210 बाँसरी बर्दिया सँगसँगै फोनको 11 14 99

होई संचरित कर खाई व्यायाम शब्द करी धूम पान मदिना मेटु रखी तर फल नियंत्रण करी आशु निर्णय काली जीवन रचा निशा रोगों से बाकी स्वस्थ जीवन अपनाई रेडियो गुरुबाबा एफएम का सहकार्य स्वास्थ्य कार्य ने प्रत्याशी जनहित मोदारी संदेश।

सुनी करते हैं तो सब हमें एकदम होंगे जंगल सफारी अर्थात जीप सफारी एक पर्यटक लाई घना जंगल भीतर बने जंतु र प्रकृति को नजर में तो अनुभव करने मौका मिलता जंगल सफारी घना चाहने का लगी गाड़ी को अभाव न होस

0: प्रोटेक्ट सफारी गाड़ी एवटा गाड़ी में नौदि बाहर जनसम को सुरक्षा होते अभुक देखि अर्क गाड़ी थप्ने योजना में पर्यटन व्यवसाय फेरी नाप्ता का अध्यक्ष रेग्मी
1: छपना

0: ये के बाद में अभी तक वित्तीय संस्था लिमिटेड को रेटिंग और बढ़ा एवं का सरकारी नाम जैसे एक प्रजारी संदेश
1: सूचना सूचना सूचना निःशुल्क तरह सरकारी शिविर संबंधी

नमस्कार। मेरा नाम कुमार चौधरी, मस्त्री नगर पालिका वार्ड नंबर 4 है और प्रॉपर्टी जमीन के उद्योग मदर स्नातक सुप्रे किसी का अनुसार हमने वो प्रॉपर्टी जमीन के उद्योग माता

0: 呀，资金大咖的人来的，那这个，我们老板娘们都在里面拿着一大金子，老板娘们给你讲，反正就是像你一样的，来的他们，老板娘们家里，我这边的家属，我这边的家属，啥金子都，我们老板娘们啥金子都拿了，这个可以。
1: महिला महिला पुरुष होकर के ना पढ़कर पढ़े तारा आजकल महिला होकरों को अपने जाति को लेके पढ़कर पढ़ना फिर जाता बढ़िया बांसकड़ी पास बांसकड़ी का लोगों पर कर लेना था यह बात हम लोग देख सकते हैं बात है बोलो बात है बच्चन बढ़िया बात है बढ़िया बात है हम तारा का सिर्फ हम लोग देख के किनारे Thank you.

0: प्रमुख खान जाति चीर आशे आपन पर्खाजनी संस्था मार्फत सुशासन का अभ्यास अध्ययन आपन संस्कृति अभ्यास राज्य कानूनी मान्यता दिने पर्वत मुखंडमा समस्या उठाइ थारू पर्खाजन्य संस्था कानूनी माधव सम्बोधन नेपालको गणतन्त्र प्राप्ति पाठ्यक्रमलाई सम्पूर्ण हो। थारू पर्खाजन्य संस्था कानूनी मान्यता दिविया बर्दिया बाह्र बर्दिया नगरपालिका सबसेतिर दिएर यी पालिका 2077 सालमा बर्दरेन पास गरेर बर्दरेन पास गरेन भूमिका खेलिया बाह्र बर्दिया नगरपालिका तत्कालीन नगर प्रमुख दुर्गबहादुर थारू
1: पहिलो
0: महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दिन होला। त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्य

स्टैंडली आपको राजकीय शक्ति प्राप्त करने का तराजू के बाद आपको स्थान निर्माण करने का संस्कृति के आविष्कार में युक्ति

0: 确定能注册。
1: 他都不可有本班 business 谈对了，所以来个 marketing 就是他主动使用的速度，班班里家里比比主动的打通，看不懂那个，需要去打通。
0: 阿斯姆普姆斯密克纳，阿德拉克斯蒙迪泽姆杰克纳的打通，确定打通了，哪里有所有的路都一共造成的打通。
1: 刚刚的卡斯哈马斯列，桑巴白什么，不可以的马的打通。아니까소가이부스
0: 켓가요성타에서가요소가타리에서가요가나포켓소켓이바로라프사마리바로가스코프레터에리에주로가스레귤레이터
1: 그가라이터고니에미드마니리치에가요주로그디리코프레터에서가요가요가요가요가요가요가요가요가요가요가요가요가요가요가요가요
0: घर में मोमबत्ती धूप रदियो बांधा विशेष सतर्कता अपनाऊं नजीक को दमकल को नंबर अनिवार्य सेव कर रखा।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा।

0: शिकायती अपराध नहीं करी वह अपराध में शरीक होकर सताहित भागीदार नहीं बनी।
1: डिवीजन बोर्ड कार्यालय पर दिया फोन नंबर 084-420-156।